शर्मा क्रॉम्पटन ब्रांड का एयर कूलर सीलिंग फैन स्टैंड फैन मिक्सर र आयरन को खरीद में एक्साइटिंग ऑफर पाउनुहोस् हरेक 15 दिन में क्रॉम्पटन को मिक्सर र बम्पर लक ड्रामा माइडिया डबल डोर रेफ्रिजरेटर जितने मौका पनि नागरिकता मात्र भइपुग्छ सहज ईएमआई मार्फत खरीद गर्न सकिन्छ

0: होशियार ये संसार बदला आधुनिक प्यार सुपरस्टार का बाजार बदला।
1: रेडियो थाहा संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियता को अभ्यास।

अकेला नहीं कहूँगा, उसे ना ही कोई प्लान है, हेटरों को ढूंढू जैसे आई मेरी डैन है, ऐसे भी शहर है जिनमें हम बैन है, काली डबल आर टेरी एर टैन है, ये जैन जी के चौदह लोग फाइव से नहीं बाहर आ रहे, गंदे इन लॉन्डो के गेम नहीं संभाल पा रहे, मरने को पड़ी बस फिर भी न मार पा रहे, कल नहीं आ रहे हम साथ में तूफान।

नेपाल जैसे तालिब मैं बॉय शाह बेबी नाम पे ही कालिक होने वाले शोहर तेरे गेम के है वालिद नीचे है कलिनन क्योंकि ऊपर वाला मालिक ठीक नहीं हम सब खराब कर देते पानी हाथ में पकड़ते शराब कर देते अनहोनी होनी हानि लाभ कर देते आते मैदान में तो साफ कर देते।

बेस्ट इन द गेम के हाथ नहीं आता, आज तक बचाना कोई साज नहीं आता, लास्ट में आता हूँ मैं लास्ट नहीं आता, वो क्या है ना मोहतरमा मैं बाज नहीं आता।

लटक मटक लौंडो के दिल पटक पटक ससे जाए अटक अटक आता माची सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए बेबी टिकट टिकट काटू तेरी टिकट टिकट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

अंग तेरा मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकड़ पकड़ I am the baddest motherfucker.

तो समझ ले, मैं बोलूँ कम आँखों से पढ़ ले, प्रेम के टॉप पे बैठा जिसके भी बस की हो आके पकड़ ले। इस गेम क्रैक की नहीं हो रहा ना, फिट कोई ट्रैक की नहीं हो रहा ना, यहाँ फिर मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कम बैक की नहीं हो रहा। बादशाह है नाम मेरी जान, प्यार से मुझको वो पैडी बोलती है, गेम में लॉन्डो का बापू बेबी, एक तू ही थोड़ी है जो मुझे डैडी बोलती है।

0: तुम्हें बॉबी चलाता हूँ, पर सामने वो बंदी तो मैं गुड बॉय बन जाता हूँ। उड़ती है खबरें लेता ना स्ट्रेस, नौकरी मुक काट ऑन टू द नेक्स्ट, ओपन है प्राइवेट लाइफ है ब्लेस, मुट्ठी में गेम मेरे घंटे पे प्रेस, बैड बॉय शाह कैसे तुझे तेरे बस का लगा, मुझे ऐसे मस का लगा, रही ना किसी काम धाम की जब से लड़की को चस्का लगा मेरा।
1: लड़की खराब तेरी थी।
2: रेडियो था संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियता को अभ्यास।

देख के तुझको आए पसीना, शक्ल है इंडियन बॉडी लटीना, चिकनी चमेली कट कटरीना, सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना, तूने ये तो किया बर्बाद, तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है, टीचर के लेक्चर याद ना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

0: एक्काइसौ शताब्दीको नयाँ उपचार विधि लेजर थेरापी करिब एक दशकदेखि निरन्तर सेवामा समर्पित लेजर थेरापी क्लिनिक लामो समयसम्म कडा औषधिको सेवनले पेट र मृगौलामा खराब असर गर्न सक्दछ र उपचार गर्दा गर्दै पनि रोग बल्झिन सक्छ। त्यसैले लेजर थेरापीबाट शुरूमै उपचार गरेमा यी खराब रोगहरूबाट बच्न र पूर्ण रूपमा निको पार्न सकिन्छ। हाम्रा सेवाहरू हाड जोड्नेको दुखाई, मेरुदण्ड, घुँडा दुखेको, मस्तिष्क पक्षघात, फोक्सो सम्बन्धी रोगहरू, नसा सम्बन्धी रोगहरू, नसा च्यापिएको, कोलेस्ट्रोल, कपाल झर्ने, नाक कान घाँटी, स्त्री सम्बन्धी रोगहरू र छाला सम्बन्धी रोगहरूको वरिष्ठ डाक्टर सुशीला वैद्यद्वारा सफल उपचार भइरहेको छ। सम्पर्क लेजर थेरापी क्लिनिक लगनखेल ललितपुर, लगनखेल पोली क्लिनिक भवनमै। फोन नम्बर 01-5452-352, मोबाइल 98510-600-69।
1: के तपाईँ सम्पूर्ण घरयासी सामानहरू एउटै छानामुनि किनमेल गर्न चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस्, मीन भवन नयाँ बानेश्वरमा खुलेको छ अल इन वान मार्ट सुपर मार्केट। हामी कहाँ लत्ता कपडा, खाद्य सामग्री, खाना नास्ताका पसलहरू, बैंकिङ संस्थाहरू लगायत नुनदेखि सुनसम्मका सामानहरू एउटै छानामुनि उपलब्ध छ। अब घरयासी सामानहरू किनमेल गर्न धेरै पसलहरू चार्नु पर्दैन। सम्पूर्ण सामग्रीका लागि अल इन वान मार्ट सुपर मार्केट, मीन भवन नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ।
2: प्यार इतना ज्यादा दिया कि वो रोने लगी, मानसिक संतुलन अपना खोने लगी, पहले गंदा किया फिर खुद ही धोने लगी, एक रात में ही लव उसे होने लगी। मैंने बोला एक छोटी सी फाइट है, सुबह ठीक 6 बजे मेरी चंडीगढ़ की फ्लाइट है, स्केड्यूल थोड़ा टाइट है, कहती आदित्य झूठ बोलने की भी एक हाइट है, कैसे बताऊं लाइफ झूठों से बनी, पीस है रखे जो गोटों से बनी, मेरी ना किसी इंसान से बनी, बनी तो बस कब्रिस्तान के भूतों से बनी, मैं कभी बहुत ज्यादा सैड कभी बहुत ही फनी, मेरे गोया के बैक कान टिफनी, मेरे और जीत के बीच कोई बट इफनी, टिप्पणी पे न करो टिप्पणी, तेरे जैसा कहां से मैं बस चाटता है तू, मैं ऊपर वाले से ब्रह्मांड मांगता फिर, कभी प्यार तो कभी ज्ञान बांटता फिर, जो भी जलता है उनको मैं छाटता फिरूं, हिट पे हिट मैं मारता फिरूं, दिन रात लगातार मैं जागता फिरूं, उसके साथ मेरी बनती है सही, उसे मैं जानने का शौक है, मैं नाचता फिरूं।

हमें डूबने का शौक था, उसे बचाना आता था। हमें मचने का शौक था, उसे मचाना आता था। जोड़ी क्या ही खतरनाक थी हमारी, कि हमें नाचने का शौक था, उसे नचाना आता था।

जब मोहब्बत जिसका हिसाब लग जाए, बोले वो तो लगे के रब्बा बच जाए, लड़ मरेंगे लोग आग लग जाए, चेहरे से तेरे जो नकाब हट जाए।

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा, खुशी के आंसू और बात है लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

गोदरेज का विभिन्न होम अप्लायन्सहरुको खरीदमा आकर्षक अफर फ्रंट लोड वाशिंग मशीन में 6 केजी एरियल टप लोड में 2 केजी एरियल ट्विन टप में 1 केजी एरियल माइक्रोवेव ओवन में कुकिंग किट र एयर कंडीशनर में फ्री इंस्टॉलेशन नागरिकता भए पुग्छ सजिलो ईएमआई मार्फत सजिलै खरीद गर्न सकिन्छ।

0: फेको का विभिन्न होम अप्लायंसर को खरीद में कैशबैक तथा स्योर शॉर्ट गिफ्ट। वॉशिंग मशीन में 6 केजी एरियल मैजिक, डिशवॉशर में वॉशिंग टैबलेट, एयर कंडीशनर में इंस्टॉलेशन और फ्री स्टैंडिंग ओवन में प्रेशर कुकर। नागरिकता मात्र भए पुग्छ, सहज ईएमआई मार्फत खरीद गर्न सकिन्छ।
1: यो नयाँ वर्षको अवसरमा माइडियाका विभिन्न होम अप्लायन्सहरूको खरिदमा आकर्षक उपहार तथा क्याशब्याक, साइड बाई साइड तथा मल्टी डोर रेफ्रिजरेटरमा फ्री इन्डक्सन, फ्रन्ट लोड वासिङ मसिनमा फ्री 6 केजी एरियल, टप लोडमा फ्री 2 केजी एरियल, सेमी अटोमेटिकमा 8 इन्ची एरियल, डिस वासरमा वासिङ ट्याब्लेट र माइक्रोवेभ ओभनमा कुकिङ किट, हरेक खरिदमा स्योर सर्ट किट र बम्परमा माइडिया 519 लिटर रेफ्रिजर जित्ने मौका। नागरिकता भए पुग्छ, सहज ईएमआई मार्फत खरिद गर्न सकिन्छ।